0: चक्री पगड़ी बंद रे बाबू हापा बदू राय हापा बदू चक्री पगड़ी बंद करा गो कंधे पर धोती खा लो छोरी बुलाए जाओ
1: रात्रो टूवल घर मिले
0: घर मिले रे भगवान।

0: चकरी पगड़ी भांदरे बाबू हा बाबा दुराई ए हा बाबा दु चकरी पगड़ी भांदलो कला गो कंदे पर थोती खालो अरे कला गो तणो तण के गो तुम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घर में ले चाहिए
0: घर में ले रे भगवान
1: हां
0: बोलो।

0: गाओ के रे बाबू ताड़े महीना ना ही शिवालाल के लागो है कड़वारी अरे कड़वो ताड़े में ढालिया से वो ढालिया का के मैं डबला खा लेकिन क्या डबला का लागो ठोला मार लेकिन क्या हाँ हाँ तो लाखों सी आदमी देख रहा हूँ से
1: ये नाम वेतरे का है को बापू
0: वेतरे भगवान

0: चक्री पगड़ी बांध रे बाबू हापा बदूरा ए हापा बदू चक्री पगड़ी बांध लो कला को कंधे पर धोती खा लो अरे कला को तनो तन के तुम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घर में ले जाए यार
0: घर में ले रे भगवान।